जिथे सारिया भगतों नूं सन्मानिया उत्थे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहिंदे ने हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ये समुंदर विच कहिंदे ने जदों देवत्या ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहिंदे ने हे मालक

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ कृपा करो सरवण कर।

एक गलूं ते राजे नु तसल्ली होई के रानी माड़े पासे नहीं आई, पर कहन लगा रानी ने मैनु दस्या क्यों नहीं।

उस जंगल विच आए, उस ब्रिक हेठा आके बह गए जिथे सब तो पहला गुरु नानक दे दर्शन कीते। राय जी आ बन दे पत्ते पत्ते कोलो पुछदा है किते कोई गुरु नानक दा सुनेहा तो नहीं आया भाई। ते फिर राय जी दे नाल राय दा नौकर सी उमेदा, आख्या उमेदिया तू गुरु नानक दे घर जा, पता कर कोई सुख सुनेहा आया गुरु नानक।

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सन आख्या मेहता जी आप नू राय जी याद करते हैं उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हें मेहता जी आए राय जी ने आउंदे ही पुछया मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना होगे क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी राय जी जापद गुरु नानक हुण नहीं आवेगा आख्या इवे ना आखो तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज ता मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी जापद ओ भी इत्थे

माता तृप्ता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखा ना होण करके ठोकर खावे। गुरु नानक पातशाह ने अगा होके मां दे गल ना लगे। माता तृप्ता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिलिया के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने यही कहिंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मूंह ते चपेड़ मार तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं ता कालू पिता दे चरणां नूं हाथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले भी राय बुलार नूं मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठां बैठा है, गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठां, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मूंह करके बैंदा है कदे इस पासे मूंह करके बैठे। सोचदा खबरे इथों ना आ जाऊं, फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रहा ते पिछे आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता है, चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हन की।

0: देह दस मन चाह जाए सूरिया
1: पवित्र सही चरना धूलिया।

मन करके मेरा उथे फेरा नहीं पिया लगता, टिकिया नहीं जाता मैं। लंपट चोर दूत मतवारे, काम क्रोध लोभ मोहंकार आदक ते इन्हां दे मारे हुए जिहड़े बुरे लोग ने, तिन संग सदा बसेरा उन्हां लोकां दे नाल मेरा वासा नहीं तुदा बने है। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपे मोह माही, जिंदगी विच कठा मैं की कीता, काम कठा कर ले, क्रोध कठा कर ले, माया कठी कर ले, हंकार कठा कर ले, दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही, ए नेकी दे काम जिहड़े सुपने विच भी नहीं पए आउंदे, उंज तां मैं जीवन च की कर ले, नेकी ते भलाई मेरे सुपने विच भी नहीं पई आउंदी। साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तो साडा शीशा बनाउण लगिया कमाल करती। साहब कहिंदे ने, चेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। समुंदर सागर जिन्ना तू पानी नाल भरिया, ए तो भी बहुते अवगुण ने साडे, कदे कदे ध्यान मारदे रहिए, बहुत फर्क पै सकदा। साहब पंचम पातशाह कोल पिशावर की साध काबल की संगत आई सी, सूबा सरहद की संगत आई सी। एक सिख ने उठ के बेनती की, साहब जी गलतियां बड़ियां, गुनाह बड़े हो जाते। साहब कह लगे, फिर की होया? कह लगे, महाराज किवें बख्शे जावांगे? साहब कह लगे, इस तरह करो, जदों अगले साल आओगे ना, पूरे साल का हिसाब करके लिया है, जेड़ी गलती ते गुनाह हो उहदा भी हिसाब कर लेना, लिखी जाना नाल नाल, जेड़ा पुन कर्म करो चंगा कर्म करो भी लिखी जाना। चले गए, साल बाद आ गए, महाराज ने पूछिया, याद कराया, क्यों भाई गुरमुखो, तुसा एक सवाल कीता सी ते असां तुहानू कहा सी कि अपनियां वहियां बनाओ, खाते बनाओ, बाप दे ते पुन दे तुसी खाते बनाओ, खाते बनाए ने कि महाराज बनाए ते सन, लियाओ फिर विखाओ, कि महाराज लियांदे कोई नहीं, क्यों नहीं लियांदे, कि महाराज लिखिया ही कुछ नहीं सी होया। कमाल है भाई, तुहानू लिखण नू कहा सी, तुसा वहियां ते खाते बनाए, लिखिया क्यों नहीं? कि महाराज गल ए है कि जिसले गुनाह कीता लिखण लगे ते सोचिया भी उथे महाराज की हजूरी च संगत च पढ़ के सुनाना पेगा, नंगे हो जावा, शर्म आ गई, लिखण तो शर्म आ गई, नहीं लिखिया। महाराज कहन लगे, फिर पुन कर्म भी कोई नहीं कीता, पाप कर्म तां लिखण लगिया शर्म आ गई, कि महाराज मेरी शर्म नहीं आई, पढ़ के फिर करन लगिया भी शर्म आ गई, कि जे तां करांगे ते लिखणे पैणगे, महाराज दा हुक्म है, जे लिखांगे ते सुनाउणे पैणगे, नंगे हो जावा। इस करके पाप कर्मा तो बचते ही चले गए, होए ही नहीं, तकरीबन तकरीबन बचे ही रहे हैं साल भर। महाराज कहन लगे, जे पाप कर्म नहीं कीते फिर पुन कर्मा दा की हाल रहा? कि महाराज ओ कुछ कुछ होए जरूर ने, पर लिखण लगिया शर्म आई, जे लिखे कदे कदे एक अद्धा तां मसा हुंदा सी, ते जे कहीए भी लिखीए ते आखीए नाले तां हंकार होवेगा, ते नाले की गिनती देंगे, महीने च एक पुन कर्म होया सी कि महीने च दो होए सन? शर्म दे मारे हैं महाराज, क्योंकि पुन कर्म बड़े थोड़े सन, ओ नहीं लिखे गए, ते पाप कर्मा तो तुहाडे लिखण दे काम ने बचा लिया, कि जे लिखांगे ते नंगे होवांगे। इस करके ना करिए ते ना लिखिए, बिल्कुल जिसले बंदा आत्म सर्वेखण वल लग जाए ना, अपने आप वल वेखण लग जाए, अपने आप नू भोखण लग जाए, उदो पापां तो बच जाता है। इस करके साहब दे दर दे उत्ते हथ बन के खड़ा, अपराधी होके खड़ा, सचे पातशाह कृपा कर लो, मेरे कोलो तां कंचन नारी मैं जियो दुबत है, मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन आन रस लाया, हर कब चेतना आवई क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सा मेरे, तू कृपा करके बख्श ले, मैं ता अवगुणी गुनाहगार पापी हां, जिवे जानना है हों अपराधी गुनाहगार हों बेमुख मंदा, भाई गुरदास के कथन अनुसार ए अरदास लेके बह जाइए, कुछ पाप कर्म तो बच सकांगे, कुछ पुन कर्म वाल प्रेरे जा सकांगे, कदे अपने आप दे गुरबाणी अनुसार गुरबाणी दी कसवटी नाल अपने आप दे झाती मार लिया करिए, वेख लिया करिए किथे कु बैठे हां, की हाल है, किवें बख्शे जावांगे। बख्शे जाण वास्ते अरदास बहुत वड्डा साधन है सिख दे कोल, ते अरदास

पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहन। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सिद्धे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मर्दाने आ चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

बंदे नूं अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आउंदा। होर तां पेश जांदी कोई नहीं।

दुनिया दे मालिक साहिबे दो आलम बानी के बोहित नाम के जहाज साहिब धन गुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हां बचनां दा उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़ियां करदा है मेरे पातशाह किते, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावा बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रसना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रसना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालिका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

मच पे आल जियो। हो वारी हो वार ने कुर्बान तेरे नाम नू, तू संसार पाया सिर सिर संदे लाया।

मंगा रहे ते तेरी हस्ती जे कोई है जीव तू कदे अपनी हस्ती नु पछाणन दा जतन करे ते फिर ओदी हस्ती दी पछाण हो जा। रोज पढ़दे करता पुरख एक ओंकार सतनाम करता पुरख आपा तां कीते होए ना ते साहब कदे ने करते की मित ना जाने की आ। जो सुभाव है सो वर्ती आ, जो ओनू चंगा लगदा है सो वर्तना है। कीते होए दी की हस्ती है ते करते दे कम विच क्योंकि ओ तां बीओ पूछ ना मसलत धरे जो किछ करे सो आपे करे। आग्या आवे आग्या जाए आगे पाछे हुक्म समाए ओदी रजा तो बारिया जाके की मैं वंगार प्रवान कर सकना। साहब कहंदे ने पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साए। पंजां तत्तां दी सारी रचना मेरे मालिक तू कर दित्ती। किसे दी हस्ती है कोई छेवां तत् बना सकिया होवे अज तक? गलती है मनुख दी इस सारी सृष्टि विच कदे ख्याल करिए ना। इस धरती ते साडे वर्गे बाकी जीवां दी गल छड्डीए, बाकी 84 लाख जीवां दी गल छड्ड दे, साडे वर्गे 4 अरब बंदे जीउंदे वसदे इस वेले, वध भी जाणगे घट भी रहे ने। इस 4 अरब बंदे दी बोझ वाली यह धरती एक निक्का जिहा टुकड़ा है किसी सूरज का जिहदी रोशनी नाल यह तत्ती है। विज्ञानक कहिंदे इस सूरज नालों कितने अरबा वरे पहला यह टुट गई है, ठंडी होंदिया होंदिया जीवन का कारण बन गई है। हालांकि कारण बनाने वाला कोई होर बैठा है, कारण वो बना रहा है, वो कहिंदे ने बन गई है कारण, उस सूरज के दुआले घूम रही है। ते फिर कहिंदे ने अगे कहिंदे सन सूरज स्टेशनरी है, सूरज खलोता है धरती चल रही है। कहिंदे ने नहीं हुण यह सारे परिवार नूं लैके मंगल बुध बृहस्पति नूं लैके इन्हां सारे ग्रह नूं लैके सूरज भी चल रहे हैं, सूरज भी किसे महासूरज के चक्कर विच है। 150 करोड़ सूरजा की गिनती भी कर ली इन्हां दे कंप्यूटर ने कि 150 करोड़ सूरज आकाश विच चमक रहे हैं जिन्हां चों एक यह सूरज है और इहदे नालों बहुत वड्डे वड्डे सूरज ने, बहुत छोटा सूरज है। जरा ख्याल कर लेना कि एक एडे छोटे जिहे सूरज की छोटा जिहा टुकड़ा मात्र है धरती, इस धरती ते 4 अरब बंदे, उन्हां बंदियां चों एक मैं, मेरी हस्ती की है कुछ भी तां ना होया। पर नहीं, हर बंदा यह चाहुंदा है मैं केंद्र हो जावां, धरती मेरे द्वारे चले, सूरज मेरे द्वारे चले, चंद्रमा मेरी परिक्रमा करे, वाहिगुरु जो कुछ करे वो मेरी मर्जी मेरी इच्छा मुसाब करे। और जदों बंदा इच्छा करता है तो इच्छा की पूर्णता नहीं होती क्योंकि इच्छा की हद कोई नहीं। इच्छा बंदा लम्मी तो लम्मी करता है, पूरी होंदी नहीं तो फिर झोरा बन जाता। इच्छा विच दुख है, रजा विच सुख है। जदों बंदा कहे जो हो रहा है वधिया, जो कुछ होवे सिर मथे प्रवान करता चला जावे तो सुखी है। साहब धन गुरु नानक पातशाह का रोज जप जी पढ़ते हो, साहब कहते ने केव सचियारा हुई है, केव कूड़े टुटे पार, उल्टे पासे चलन तो किवें बचिए, कूड़ दी पाल किवें टुटे, कूड़ दी कंध जो मेरे ते रब दे विचकार पई हुई है किवें टुटे, पाल कंध नूं कहिंदे, मैं सचियार किवें बणा, तो उहदा उत्तर इक्को ही बख्शिया। साहब कहते ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, रजाई दे हुक्म विच तुर तू, रजा वाले दे हुक्म विच चल, जिदी रजा चलदी है पई वो चलाई जांदा है, किते किते कुछ तेरी मर्जी दा जां तेरी इच्छा दा हो जांदा है ते तू भुल जांदा है कि मैं करवा लिया या मेरी मर्जी दा हो गया। ऐसा है कि तेरी मर्जी ते उहदा कीता किते सबब नाल रल गया, होर गल कुछ नहीं हो, तेरी इच्छा ते उहदी करनी किते सबब नाल रल गई है ते तू समझिया मेरी मर्जी पूरी हो गई, ऐसी गल नहीं। मर्जी तां उसे दी चल रही, रजा तां उसे दी चल रही, ए भी ओदी रजा कि उन्हें तेरी मर्जी ते अपनी रजा कठी करती होवे किसे सबब नाल। पर जे किते ओदी रजा ते तेरी मर्जी नहीं रलिया ते एदे विच आके जे गिला करेगा झोरे नाल भर जाएगा, फिर भी जे शुक्र विच रहेगा आनंद बनिया रहेगा। और ऐसे लोग होए ने, गुरमत विच ये गल दृढ़ कराई गई, बार बार ये दृढ़ कराई गई ते कुछ लोगों ने गुरमत अनुसार
एक गुरमुख प्यारे इको एक नौजवान पुत्र ग्रेजुएशन कर ली है बीमार हो गया बीमार हो गया बीमारी ला इलाज हो गई गुरुद्वारे मत्था टेकन गए ने सिंगनी नू कहंदे ने तुसी घर बैठो हालत काका जी दी ठीक ने मैं गुरुद्वारे जाना मैं आ जावांगा तुसी चले जाना मगरों बच्चे ने प्राण त्याग दिते सबर वाली बीबी ने गुरसिख बीबी ने वेख्या इको एक पुत्र नौजवान पुत्र पढ़िया लिखिया पुत्र बरसरे रुजगार होने वाला पुत्र अखां दे सामने दम तोड़ गया हाथ बन्ने ने ममता ने अंदरों उछाला मारे है मगर गुरसिखी ने उहदे ते दबदबा पा लिया कब्जा कर लिया है उस आत्मा नूं अपने हत्थां च लै लिया सिखी ने मोह दे वस नहीं जाण दिता उठी कुंडा मारिया गुरुद्वारे आ गई आके संगत च बैठ गई जुड़े बैठे सिंह ने परत के वेखिया भी नहीं अरदास हो गई प्रसाद लैण वेले निगाह पई ये तां आई बैठी समझ गए आपे ही समझ गए कि छड़ के आने वाली तो हालत नहीं सी छड़ के आ गई तो छड़न वाली गल ही हो गई इशारा किया बीबी ने सिर दे इशारे नाल दसिया भी कोई नहीं उठ के खड़े हो गए साध संगत जी एक काका जी सन वो गुजर गए ने ते तुहाडी जे कृपा होवे ते उठ के चार प्रेमी दास दे नाल चलो चल के उन्हां दी मिट्टी टिकाने लाए हुण संगत नूं पता है इहदा इको एक पुत्तर है तुर गया मगर किस हौसले नाल गल कर रहे गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकले ने लोकां ने अफसोस करना शुरू किया वो कहंदे ने शुक्र है किसे प्रेमी तो ना ही रहा गया बहुते लोग समझते ने भी रवा दे इस वेले पिटा दे इस वेले हंजू कढ़ा दे इस वेले कहंदे ने सरदार जी एडा जब्त ठीक नहीं वो कहंदे ने जब्त कादा मैं ता कर्जा ही हां मालिक दा देनदार हां जे ए भी ना आउंदा आ जेड़े 22-23 वरे मेरे कोल कट गया जे ए भी ना आउंदा किन्ना सुख वेखिया किन्ना प्यार दिता उसने किन्नी मेरी झोली उन्हें ममता नाल भरी किन्ना खेड़ा उसने मेरे वेड़े च वरताया जे ए भी ना आउंदा फिर मैं की कर लैंदा जे इन्ना भी वो मेरे घर च ना आउंदा फिर मैं की कर लैंदा मैं मालिक दा देण हारा कि मैनू सानू दोवां जीआं नू वेड़े च रज के हसण दा मौका उन्हें दिता रज के ओदी सेवा करन दा मौका दिता ओदी रजा उन्हें भेज दिता ओदी रजा उन्हें बुला रहा मैं झोरा जे तां मेरे झोरे कीते आ आहा क्या बात है बाबा जी ने एक बड़ी प्यारी गल कही साहब कहंदे ने नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख कदे कदे बंदा खाम खा दुखी होके सुख दी इच्छा करदा है ते झोरे नाल भरिया होया कई वारी वागरू नूं गालां कढ़न तों वी बाज नहीं आउंदा गिला करदा करदा बहुत अग्गे तक वध जांदा कहिंदा मैं तेरा की बिगाड़िया सी कदे किते सवाल कर दईए ना बंदिया ते इत्थों पुछिए तू सवारिया ही की रब दा तां छड तू की सवारना है तू अपना ही की सवारिया किसे दा ही की सवारिया बिगाड़न दी गल तू छड तू बिगाड़िया की नहीं बड़ा कुछ बिगाड़िया रब नाल बिगाड़िए ते सारा कुछ बिगाड़े ते हुण भी जे तू झोरा कर रहा है गिला कर रहा है तां उहदे नाल बनाउण वाली गल नहीं कर रहा बल्कि बिगाड़न वाली गल कर रहा मन मूर्ख काहे बिरलाई है गुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चतार जो किछ करे सोई पलमान भूला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लब्त रहे हो रस लोभी पतंग नहीं तू इस तरह कर राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाए साहब कहने नानक बोलन चखना चख मारन वाली गल है दुख छड मंगी है सुख ए ता मालिक दी रचना है सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप जे तेरे बोले दा उथे असर कोई नहीं ते चुप रहना चंगा नहीं भला जो तिस भावे सो थी है नानक क्या मनुख तेरी हस्ती कोई तेरे कोल सब तो वड्डा सुख दा साधन ए है कि जो किछ करे सोई पल मान इथे साहब कहंदे ने ओदी रजा च आउण वास्ते आवत किने ना राखे आ जे आउणा तेरे हाथ च नहीं ते जाना तू किवें अपने हाथ च लैणा चाहुणा जावत क्यों राखिया जाए ओदी तां रचना है जिवें हरण दे उत्ते एक माल टिंडां दी लगी हुंदी एक भरी गई एक सखणी हो गई एक थल्लों भर के आ रही कुत्ते सखणी हो रही है एक चक्कर चल रहा है रचना दा ओदा चक्कर है जैसे हरट की माला टिंड लगत है एक सखणी होर फेर भरियत है तैसो ही ये खेल खसम का ते तू तां इक छेवां तत नहीं बना सकदा ओदे पंज तत्तां विच कोई अजे तक तब्दीली नहीं कर सकिया ना ते इत्थों कदे हो सकणी
ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸਾਂ ਗਿਣ ਲਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਿਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਬ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਦੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਰਜ਼ਾਬ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन नू चित कीता उठे, सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे है। कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए होए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नू सिखां नू फड़िया, जोर दी झटका मारिया। साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे कोलो नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। बादशाह मैनू तुसी आ गया दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गईयां तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहिंदे ने, भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख दी रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहिब उठे अपने आसन तों, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिंदा, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पहरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदियां होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमृत पवजल तरिया भगत अमृत भी संसार सागर तू पार होके

भगत अम्बरी कुमारी भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अम्बरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अम्बरीक जिन्हां दे पिता दा नाम ना भाग सी राजा अम्बरीक दा राज मध भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। एदी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीक दी रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुकम सी तू अम्बरीक दी रक्षा करनी। इस गल दी गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अम्बरीक ने वर्त रखे पूजा पाठ कराया यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अम्बरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी नेक बड़ा सी दान पुन करके ए राजा अम्बरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अम्बरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे ठीक है राजन। जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया। ते हुण पेड़ अस उपारना, ओ उठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अम्बरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ये मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा तां इह सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिए, तो वह श्राप देन वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नूं, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

दरबार शरीफ जद ने सुनिया कि ना तो देवते बचा सकते ने ना खुद भगवान। जद भगवान ने कह दिता कि जदों तक अमरीक ना चाहेगा तू बच नहीं सकता, ता दुर्बाशा रिखी हुण रिखी होण दा माण कट गए। दुर्बाशा रिखी शिवलोक इंद्रलोक ब्रह्मलोक अते बैकुंठ तों हुण वापस घुमदा होया इस मात लोक विच इस धरती ते दुर्बाशा रिखी राजा अमरीक दे राजमहलां विच आया। पिछे पिछे सुदर्शन चक्कर भी है। हुण दुर्बाशा रिखी मन विच मान नहीं रहा, हाथ जोड़ के ते अमरीक भगत दे चरना ते डिग पिया और कहन लगा, राजन मैनू माफ कर दे, मेरी जान बचा। पर सात संगत भगत अमरीक ये नहीं सोचता कि एक महारिषि मेरे चरणा ते डिगा पिया, ओदे मन विच मान नहीं, उन्हें फिर भी हाथ जोड़े ने कह लगे, दुर्बाशा रिखी नूं तुसी बड़े उच्चे हो, परमेश्वर की बंदगी कीती है, तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको, ये ठीक नहीं। दुर्बाशा रिखी उठ के खड़े होए ने पर हाले भी हाथ जोड़े ने, क्योंकि सुदर्शन चक्कर हाले पिछा नहीं छड़ रहा। भाई गुरदास जी बयान करते ने, आए पिया शरणागति माटी दा अमरीक छुड़ाया, भगत वछल जय बिरद सदाया। जदों ए दुर्बाशा रिखी भगत अमरीक दी शरण विच आया ता फिर अमरीक ने बेनती की थी, ऐ भगवान अपने इस चक्कर नू वापस बुलाओ ते दुर्बाशा नू बख्श दो। अमरीक ने दुर्बाशा रिखी दी सुदर्शन चक्कर तो बंद खलास कराई। ता भाई गुरदास जी कहंदे ने, भगत वछल जय बिरद रखाया। ओ परमेश्वर भगत वछल है, वो अपनी बिरद ही रखिया करता है, भाव कि जेड़ा ओदा हो जावे

0: परेशानी हो रही है तोड़िया। मैं जो कुछ भी कीता इसलिए कीता है कि तू आदमी पैड़ा नहीं, हालात ने तेन पैड़े गर्म करने मजबूर किया होगा। देख ले इन्हें दौलिया जिन्हें साथियों ने तेन इना मान सी तेन अकलिया छड़ के नस गए।
1: तू आज मेरी अखा खोलते सच जी
0: दौले खां, तेरे अंदर वो खूबियां ने जिन्होंने सही राह पे लगावे तो एक महान इंसान बन जाएगा।
1: महान इंसान ये किस तरह हो सकता है? मैं तो खौरिया किन्न खून हाथ रंगे किन्ने जुल्म किए ने।
0: परमात्मा बख्शन हार है, ऐसा ना लैन ना तेरे अंदर एक जागृति आएगी, फिर तू दौला डाकू नहीं दौलत खां फकीर रखवाएगा। याद कर खुदा नू पर करना
1: कलमा। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैं की जाना कलमा की हुंदा सब।
0: अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। बोल या अल्लाह
1: या अल्लाह
0: या अल्लाह।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तोता गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तोता गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा यह छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टैनिन भर के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार स्वीकृत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

0: पूर पूर देख दे,
1: पाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझो दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, आप दिया पंडा ने जलाद बन दे।

Beta.